लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज। बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।